बांटा जा सके। आपने कृपा की, जैसा भी परमेश्वर ने कृपा की आपने सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ अनंत साहब का पाठ समाप्ति, एक रिकॉर्डिंग हो रहा है कल की, फिर आपसे आज्ञा मांगेंगे। आओ अनंत साहब जी। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु।

की हुकुम है। अमृत छक के सेवा ते सिमरन विच जुड़ना है। गल एखे ही मुक नहीं जांदी वे तू अमृत छक लिया है ते तेरी ड्यूटी मुक गई है। नहीं, तेरी ड्यूटी ते हुण शुरू होई है, तेरी सेवा ते हुण शुरू होई है। अमृत छक के सेवा ते सिमरन भी करना है। अज आनंदपुर साहिब दे विच दीवान सजिया है, बहुत सारिया संगतां बैठिया ने ते विच कलगीधर पातशाह बैठे ने। सतगुरु आखण लगे वे गुरसिखो मैनू प्यास लगी है। अज संगत दे विचों एक गुरसिख उठिया, लंगर दे विच गया ते एक बाटे दे विच

मैं नहाना कैसा है, गुरबाणी विच पवित्र होण, मैं पूजना किसनू है, गुरबाणी पढ़ने वालियां नू पूजना है, आपे गुरबाणी पूजी जाएगी, मैं मनना किसनू है, गुरु के बचना नू। ते होर बड़ी प्यारी गल कहने ने, गुरसिखी दा जीवना जीवदिया मर हो मैं खोवै, गुरु के बचना नू हिरदे च धारण करन दा एक तरीका यह बहुत जरूरी है कि मनुख अपनी मनमत छड़ देवे, हंकार छड़ देवे, निर्माण होके गुरु की बाणी नू समझन दा जतन करे, गुरु के बचना नू हुक्म जान के मन। गुरसिखी का जीवना जीवदिया मर हो मैं खोवै, ते पौड़ी की अंतली सार तुक च भाई साहब कहंदे ने, साध संगत गुर शब्द मिलोवै, सतसंगत विच मिल के गुरु के शब्द नू रिड़कना करे, गुरु के शब्द नू मथे। जिन्हां ने आनंद लेना है ना, जिन्हां ने रस लेना है, स्वाद लेना है, स्वादी शाय मूह विच आ जावे ते बंदा अंदर लंघाउंदा नहीं, वध तो वध समा मूह च रखण दा जतन करदा। ते महाराज ने पावन बाणी जी बचन कीता है, सार चब चब हर रस पी जाए, गुरबाणी दा गुर शब्द दा जिन्हां ने आनंद लेना है, वह गुरबाणी नू रस लै के पढ़दे, स्वाद लै के, दुरा दुरा के, झूम झूम के, गा गा के, विचार विचार के, एक एक अखर एक एक शब्द नू समझ समझ के, लगा मात्रा तक का ध्यान रख के ठीक उच्चारण करते हैं, विचार के नाल पढ़ते हैं, वह स्वाद लेंदे ने, वह रस लेंदे ने। ते भाई साहब कहंदे ने

नानक कस मल जाए कस मल जाए हर खान नानक कस मल जाए मर गे गे मदा मर मदा मर गे हर कृत निधन कृत निधन।

पार्स पेट पर्स करो रामदास गुरु हर सतकियो समरथ गुर सिर हत्तरियो कसमल जाय हर घनन कसमल जाय हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी हम

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जा।

तो नहीं है, उथे एक नाड़ हुंदी है, उसनु बाबा फरीद जी कहंदे ने जदों दाई ने कटिया सी ना ओ नाड़ जदों कटी सी उसनु नाड़ा भी कहंदे ने, पर इथे फरीद जी ने नाला कहा। कहंदे ने के जे तैं नाला कप्पिया, कपड़ा कहंदे ने कट्टण नूं, तें तन कप्पे चुख। कहंदे ने के ऐ बंदिया जदों तेरा ए नाला कटिया गया, दाई ने कटिया, ते जे तू सिमरन नहीं सी करना ते दाई तेरी गर्दन ही कट देंदी चंगा सी। कहंदे ने कि पवा न इत्ती मामले, इतनिया मामलिया विच ना पैंदा, इतनिया झगड़िया विच ना पैंदा। कदे बंदा आप दुखी हुंदा है,

ऐसा कदे ना सोचना कि जेड़ा बंदा किसे नूं दुख देंदा है ओ दुखी नहीं हुंदा। ओ भी बहुत दुखी हुंदा है जेड़ा किसे नूं दुख देवे। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहन लगा जेड़ा बंदा दुखी होवे ते दुखी बंदा एक गल हमेशा कहंदा है कि हे परमात्मा मौत दे दे

कौन कौन दुखी है। पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आगे आकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार हो। ए वी तां इक दुख है। अज दा शब्द है

अजय सुरुवे भीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए। अजय राजा बड़ा धर्मात्मा सी, हर पासे इसकी बड़ी शोभा सी। सत्संगत चंगा काम करना ये बड़ा औखा है। अकाल पुरख तुहानू कदे चंगे काम करन दा समा देंदा है, बुरियाइयां ते जिसले मर्जी कर लो। बुरा काम करना होवे जदों मर्जी कर लो, लेकिन चंगे काम करन दा कदे कदे समा मिलदा है। कई लोग तो उसनों ही गवा देंदे ने, कई लोग कहंदे ने अमृत वेले नहीं उठाया जांदा। ते हजूर कहंदे के बुरे काम को उठ खलोया। जे किते कुसंगत विच जाना होवे जुआ खेलदिया खेलदिया सारी रात गुजार देगा, ते जे किते रहन सवाई कीर्तन च बैठना पवे ते घंटे बाद नींद आ जाएगी। आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। राजा अज चंगा कम करन दा समा आया। अज तां राजे ने चंगियाई करनी है। चंगियाईयां ते वैसे ही बहुत करदा सी, पर अज चंगियाईयां दा रिजल्ट है। राजा खड़ा घोड़ियां दा जिथे तबेला सी, तबेला उसनों कहंदे ने जिथे राजे लोग घोड़े रखदे सन उनू तबेला कहंदे। एक बहुत सारी वड्डी हवेली हुंदी है, जिस तरह ग्राउंड हो गया। कहंदे ने कि राजा खड़ा सी अपने तबेले विच ते एक संत आ गए। ये कौन सी? रब दा प्यारा, रब नाल प्यार करन वाला, ते सात संगत दोवां दा मेल हो गया। एक पासे दुनिया नाल प्यार करन वाला खड़ा, एक पासे रब नाल प्यार करन वाला खड़ा है। ते ए रब दा प्यारा कहन लगा राजा।

औरत के जिस तरह औरत अपने पति को बगैर नहीं रह सकती, ऐ अकाल पुरुष तू मेरा पति, इसी तरह मम्मी

पूर्वज दिन साल हो कैसी प्रीत कर देनी अकाल पुरख देना गुरु अर्जुन साहब जी अपने मन की तरफ क्यों प्यार कर देने।

का दर्शन किते ने मेरे प्यारे जी, मैंने किते मैनु दर्शन का करा, मैं अपना सिर ला के दे दिया कादे वास्ते एक चिन्ह मात्र।

कबीर साहब मुसलमान पर प्रीत कैसी रब दे नाल अपने शब्द विच बयान करते हैं।

मैं तेरे को बलिहार जाना, मेरे वाल मुंह कारे फिर क्यों कीती, मैं तेरे तू बलिहार जाना, मेरे दर्शन ता दे।

पर्दे लाते पाप करते कहते मैनू कोई नहीं देखता पर ये भुल जाते परमेश्वर का अंतर्यामी।

0: भगत आलोचक जी बयान करते हैं कि जेडे लोग दुनिया नाल प्रेम करते हैं उन्होंने मिलता की
1: अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे
0: लक्ष्मी कहते माया जेड़ा इंसान सारी उपर माया वाल ध्यान रखता है अंत वेले मंजी ते पे कहना दुनिया तू एवें तो चल मन मुताबक माया भी ना कमा सके ध्यान माया वाल

श्री वाहे गुरु साहिब जी। हर दूजड़ी लाभ सत गुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरभाओ पै मन होए हो मैं मेल गुवाया

0: अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पर मिला, बहुत दुख उठा ले हैं, जमन मरन बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़ के जन्म ना होवे। बोलो सतनाम, जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पवाड़े जमन मरन करके ही सबनों वड्डा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दियो। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमन मरना कट देवेगा, वह तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वह कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठियां चीजां दे विच मेरा तो जन्म यह मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठियां चीजां दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देवेगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन, जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम
1: संतन कर पा।

निकल जाए, वेड़ा बंधन सके हो बंधन की वेला फर सरव जग उछला तब तरना दे प्रार्थना लाए कुसुम बढ़ा जा जा सी टोला कापी ने पत्री से केरे बुला दूधा थली ना में फिर हो ना मिला कह भी से लिए सब हलाई सी हंस चल सी डूमना ए तन हंस नाम आत्मा शरीर टेरी शरीर मिट्टी बंधन दा है सो सास संगत वेड़ा बंधन आए मुक्ति दा वेड़ा ए असी बन जब तप का बंद बेड़ला ए असी वेड़ा बनन दी कोशिश करनी गुरु अगे बेनतियां करनी साडा जन्म सफला करो साडे ते मेहर करो साडे ते दया करो सो आप जी सारे जितने भी माई पाई दूरों दूरों चल के गर्मी के मौसम दे विच अपने कारोबार विहार धंधिया तो छुटकारा पा करके अपना किराया खर्चते हुए अपना गुरु के दरबार विच सत्संगत विच आए हो बहुत भागा वाले हो बड़ भागी सत्संगत पावे भागहीन बिन भागा सत्संग न लभे बिन संगत मैल साध संगत सचखंड है साध संगत सचखंड सरगुण स्वरूप सचखंड है सरगुण सच बैकुंठ है फेस करके तुसी सारे ही बहुत भागा वाले हो तुसी सुनिया संगत विच आना है कुछ डिसिपलिन रखना जरूरी हुंदा भाई प्यार नाल आना नाम जपना ते असी अपने जीवन दे मनोरथ नूं सामने रखना ते ताही साडे जीवन ताही सानूं पूरा लाभ प्राप्त होवेगा सो हुण संगतां आओ आखरी लाइन पढ़ो फिर अरदास भी जोड़ना हुक्मनामे तो बाद गुरु साहब जी ने बधाई दे के फिर लंगर पानी छक के अपने अपने घर जाने की कोशिश करनी संगतों ने बेनती है भाई अपना सेवादारा का कहना मनिया करो संगत विच बच्चे बड़े होंदे हन ध्यान रख्या करो ते कहा मनना चाहिए है शांति दे नाल जड़ा है सानू अपना बड़े बड़े दिन हैं अपना बथेरे दिन वड्डे हैं इस करके सानू वाली काली नहीं करनी चाहिए ते शांति दे नाल सानू अपना जड़ा है कुछ परमात्मा दा नाम जपदे हुए सिमन करदे हुए होरां तों जड़ा है परमात्मा दे नाल नाम दे नाल जुड़ के सानू संगत विच जड़ा है लाभ उठाउणा चाहिंदा है इन्हां सवासां नू सफले करना चाहिंदा घरों भी आए हैं कार विहार भी छड्डे हन फिर भी पूरा लाभ ना उठाया सो इस करके यही मन दे विच होना चाहिंदा लूटना है तो लूट लराम नाम है लूट ओही सच्चा सत्संगी ते सच्चा जिज्ञासु ते सच्चा सिख है भुलां दी माफी बख्शो आओ आखरी लाइन पढ़ो ते फिर अरदास भी जुड़ो।

थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

आए महीपत जियो कैसे को बचाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। तहां जो बेआपे माया कहां।

छाटते उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। तो यदा वादी संवादी कुछ लोग मां ते सामान दे ते कई धात गंधार नुवादी समाधि मानते हैं, लेकिन ये गाण कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वाद्य समाधि भावे मां सावे भावे धात गाँव है।

जिन कल राखी मेरी जिम बुलावे तुम बोले है स्वामी, जिम बुलावे तुम बोले है स्वामी, कुदरत कावन हमारी। साध संग नानक जस गायो।

0: जे को वचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी करिए। जो अपा इस संगत विच विचार रहे हैं गुरुआं दे वचन ने, संतां दे वचन ने, साधुआं दे वचन ने, जितनी भी गुरबाणी है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सब संतन के वचन इकट्ठे कीते हुए हैं। सो जो अपा सारे रल के विचार रहे हैं कि सानू की करना चाहिए है की नहीं करना चाहिए है, जे को वचन कमावे सो ये अपने आप ते असी कृपा करनी है। इस नूं असी फिर गुरु महाराज ने कमावा वचन लिखा, जे को वचन कमावे संतन का, कमाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सो इन्हां वचनां नूं कमाउण वास्ते सानूं मेहनत करनी पवेगी, कुरबानी भी करनी पवेगी, सानूं जिहड़ा है इस वास्ते घालना करनी पवेगी, किसे काम नूं घालना, क्योंकि घालना घाले तों बिना यह काम नहीं हो सकता है। सो फिर तीसरी जड़ी कृपा है, तीसरी मेहर है, गुरु करदा है, गुरु प्रसादी तरी है, फिर गुरु दी कृपा हुंदी है। जे को वचन अपना गुरु दी कृपा, मन बस आवा नानका जे पूरन कृपा होए, फिर पूर्ण कृपा मन बस, जो मन बस विच आ जांदा है। सो गुरु साहब एक तीसरी मेहर करदे हन, कृपा करदे हन, किन्हां ते, जो अपने आप ते एक कृपा करदे हन। बोलो पहली कृपा सुनी अकाल पुरख ने सानू कर दिती है, इस देही को सिमरा देव सा देही बाजार की, वजो गोविंद पुगल मत जाओ मानस जन्म का यही ला। इस शरीर नु जिस नु देव ते तरस रहे हैं, उस शरीर सानू बख्श दिता है। गुरबाणी गुरु महाराज ने कृपा की थी, दसा जामिया के अंदर कितनी कृपा की थी है, गुरु साहबान ने तत्ते ते बैठ कर करके सारे अपने परिवार नु बार करके अमर दी दात, सिखी दी दात, जो ए गुरु साहब जी ने कृपा की थी, दसा जामे ने अंदर बहुत ही बख्शिश की थी है। गुरु नु असी मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, क्योंकि गुरु परमेश्वर दा दूसरा स्वरूप है। वो गुरु परमेश्वर दा निर्गुण जो परमेश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, ओ नजर नहीं आउंदा है, परंतु जे उस नु सरगुण स्वरूप दे विच देखना तां गुरु दा दर्शन परमात्मा दा दर्शन है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सो कौ टल गुर सेवी अहन सह सवाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवै, सिवत समधी नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म। गुरु दा दर्शन परमेश्वर दा दर्शन है, जिमें सत संगत निर्गुण निर्गुण जो वैकुंठ है, निर्गुण सचखंड है, जो साडी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा। गुरु जी कहिंदे हन सचखंड वसै निरंकार, परंतु सरगुण सचखंड जो है ए साध संगत जो है, सच्ची संगत है, जिथे परमात्मा दा इकट्ठे होके सिमन किया जाता है, जाप किया जाता है, हरि जस किया जाता है, ए सरगुण सचखंड है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु,
0: ए सरगुण वैकुंठ है। कहो कबीर कही आ काहे साध संगत वैकुंठ, साध संगत सचखंड दा सरगुण स्वरूप है। सो साध संगत ऐसे तरह जो गुरु गुरु जो है ए परमेश्वर दा परमात्मा दा सरगुण स्वरूप है। गुरु दा दर्शन, गुरु नूं असीं इस करके मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, अरदासां बेनतियां करदे हां, है तां शरीर गुरु दा साडे वर्गा शरीर सी, जिन्हां ने उस ते विश्वास नहीं कीता, भरोसा नहीं कीता, उन्हां दा भला नहीं होया। जिन्हां ने गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु तो परमेश्वर नूं एक जाणिया, गुरु ते विश्वास कीता, धन गुरु नानक ते विश्वास कीता, गुरु दशमेश पातशाह ते विश्वास कीता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भरोसा करनगे, उन्हां जीवां दा उधार हुंदा है। उन्हां नूं गुरु जिहड़ा है ज्ञान बख्शदा है, ओ ज्ञान बख्शदा है, दुनियावी ज्ञान जो है ए तां इक दुनिया दे विच रहण वास्ते, कुछ बंदा किसे काम दे विच किसे खेते दे विच एक्सपर्ट हो जांदा है, परंतु गुरु जो बख्शदा है ए ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, आत्म ज्ञान बख्शदा है, रूहानी ज्ञान बख्शदा है, विछड़े हुए जीव नूं परमात्मा दे विच मिलाउंदा है। इस करके आख्या, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीत, दरगाह दा वसीत, दरगाह दा वकील, वकील जो है। जे सोचन दा उग वह सूरज चढ़ा हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन कोर, गुरबिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना। जितना मर्जी यह मनुख दुनियावी ज्ञान इकट्ठा, किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लवे, परंतु परमेश्वर दी समझ गुरु तो बिना नहीं आउंदी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: कितना कुछ भी यह बन जावे, जा माइक पदार्थ इकट्ठे कर लवे, गुरु जी कहिंदे नभ खंडन को राज कमावे, अंत चलै गो हारी। अंत नूं गुरु तो बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना मनुखा जन्म दी बाजी ए जीव हार जांदा है। बोलो।